इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Black Songs with Ambala Sweets. Celebrating serving the community for 60 years. Check online at ambala.co.uk for your nearest store or 1 hour click and collect available. Ambala Sweets, now open on Walsgrave Road, Coventry. Ambala, 100% vegetarian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
1: 16 days to China, guaranteed departure on 24th September with 100 off for the first 10 if booked before the end of this month. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com. T&Cs apply. Hey!

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
2: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माई नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
2: किशोर कुमार जी,
0: दिल भी है खाली,
2: एंड अमिताभ बच्चन,
0: घर भी है खाली।
2: I hate to do this, but I'm gonna have to cut it short. Otherwise, I'm not going to get to the end of the show. sorry. Forgive me, it's Friday. Your final beat, the intro, is on its way.